0: फर्स्ट मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के है, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ाऊँ?

0: प्रिया।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to you।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her।
1: तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it।

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: This is Sangeet 106.1 FM. More than just music. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. म्यूजिक.